0: ये है लाइका गोल्ड।
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हेज UB3 1AR में भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
2: You know how fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Leica Gold par.

0: Like a Gold.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, Atoll protected.
2: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
3: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
4: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
2: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
3: Thanks, playtime's over. Lovely.
5: Feel the fun.
4: Play Ojo. 18 plus gamble aware.
6: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Lyca Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lycamedia.co.uk।
7: Lyca Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
8: के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: लाइका गोल्ड।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

रात जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा। ब्रेकफास्ट विद डीप रांचा।

0: Breakfast with Deep Roger.
1: We've all been there. Noisy uni flatmates. Music blaring. Phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit kajalscouture.co.uk.
6: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchayvending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This is Like a Gold.

0: head.
1: Like our gold.
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
2: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: Great news, Tariq Halal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo, or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinna, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Rainers Lane.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए, या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Landed. You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Natuke halo ne nandala.
5: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Our September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
9: BAPS mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che aap pavitra yatra par.
8: Europe na 3-9 divas na tours.
9: France, Switzerland, इटली अने जर्मनी साथे
8: दर्शन पण अने यूरोप पण
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे आजे ज बुक करो स्टार टूर साथे
8: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
10: ब्रेकफास्ट विद डीप रांझा

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: काजल्स कुटियर फॉर एवरी सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस
2: डिस्कवर काजल्स कुटियर साउथहॉल द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR
1: एक्सप्लोर एक्सक्विजिट ब्राइडल वेयर ग्लैमरस पार्टी वेयर ब्यूटीफुल ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड स्टाइलिश आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन
2: प्लस लाइक अवर लिसनर्स गेट 10% ऑफ ऑन ब्राइडल वेयर एंड पार्टी वेयर ओपन 7 डेज अ वीक
1: काजल्स कुटियर साउथहॉल where every occasion finds its perfect style.
2: Visit kajalscouture.co.uk.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
1: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
7: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
8: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
7: યુરોપના 3 થી 9 દિવસના ટૂર્સ.
8: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે.
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
8: સીટ્સ जल्दी भराई रही छे, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
9: सो your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
10: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
11: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: 18 plus, gamble aware.
14: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
15: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Breakfast with Deep Roger. Leica Gold, traffic and travel.
1: I'm Simon James. More delays expected today around Wimbledon. There's road closures all day for play at day number 7. Also, the closures continue at South Kensington for the BST Festival. The fire service at Brentford are blocking Ealing Road between Great West Road and Netley Road. Also at Ealing, Eaton Rise is closed after a burst water main between Castlebar Road and Marchwood Crescent. And there's also a water burst if you're heading to Hayes. It's closed Bromley Common between Crown Roundabout and Pope Road. Enjoying work on the trains, no tube on the Hammersmith and City line again today. Also no district line between Tower Hill and Upminster, and no Mildmay line on the overground between Shepherd's Bush and Willesden Junction.
0: Yeah, like a gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
3: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट TravelHubWorld.com
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
7: लंदन गुड न्यूज आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस परफेक्ट फॉर रिटेलर्स ट्रेडर्स टेकअवेज एंड केटरर्स आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग फॉर आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे साउथ हॉल UB24AX Once you visit, you come again and again.
8: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Breakfast with Deep Roger.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Laika Gold.
1: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Laika Radio Network.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARERAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner, Like रेडियो.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344. Hour line.
5: Dreaming of paradise?
6: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
5: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
6: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923-883-100. That's 01923-883-100.
5: At all protected.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: SonarTours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonarTours on 0208-951-0111.
10: Hello friends, I am Sarita Sabarwal. Every weekend, 4 till 7, I will share many sweet, sweet things with you. Karti hun. Saturday and Sunday will be with me.
11: Breakfast with Deep Raja.
12: रुके जो तेरे नैना.

0: पंडित रविशंकर शर्मा के म्यूजिक पर आशा भोसले की आवाज में था ये गाना फिल्म वक्त से, और उससे पहले महबूब की मेहंदी। इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई, लता जी और रफी साहब की आवाज में ये सदाबहार गाना। और लीजिए, इन दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आपका साथ देने के लिए अब से लेकर एक बजे तक। वैसे इस बार हमारा साथ काफी लंबा चला, पिछले दो हफ्तों से मैं आपके साथ हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है, और आपको भी अच्छा लग रहा है मेरा साथ ये जानकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तो आज भी साथ दीजिए, क्योंकि उसके बाद अब हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। तो इस हफ्ते को साथ मिलकर खूब मजे के साथ बिताएंगे, इन 3 घंटों को मजे के साथ मिलकर बिताएंगे, और इस चिंता को भूल जाइए कि कल ऑफिस जाना है या कल काम पर जाना है। संडे का दिन है, मौसम भी मेहरबान है, तो बस रिलैक्स होकर आराम से मजे के साथ, चाहे तो चाय ले लीजिए, सवेरा है, चाय पी सकते हैं, और अगर चाय पी चुके हैं तो नाश्ते की प्लेट ले लीजिए, लेकिन रेडियो को ऑन ही रखिए, 1 बजे तक मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा by SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. लेकिन terms and conditions भी apply होंगे.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच में मैच होने जा रहा है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप अपने 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Tupto food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
2: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: जय श्री स्वामीनारायण. सेफ्टी डेट संडे 19 जुलाई 2026. एनुअल रथ यात्रा के लिए भक्तों को मिलेगा पवित्र अवसर भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को हैरो और ब्रेंट की स्ट्रीट्स पर खींचने का. यात्रा शुरू होगी SKSS टेंपल कैंटन हैरो से और पूर्ण होगी श्री स्वामीनारायण टेंपल स्टैनमोर पर. ज्यादा जानकारी के लिए दोनों टेंपल्स के सोशल मीडिया और वेबसाइट SKSST.org और stanmoretemple.com विजिट करें. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो. जय श्री स्वामीनारायण.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
13: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
14: Four beers, please, garçon!
13: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
7: Like a goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: केसी बुकारिया की फिल्म अमिताभ बच्चन और जया वर्धा ने जिसमें काम किया था, फिल्म का नाम आज का अर्जुन आपने सुनी। अब सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो और आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। संडे का दिन है, आप सब आराम से बैठे हैं और आप सब ने अपने रेडियो सेट्स को भी ऑन किया हुआ है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: ये है
3: Like a Gold.
0: बिल्कुल, ये आपका मनपसंद रेडियो स्टेशन ही है और जहाँ पर ऋतु शर्मा आपके साथ है और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं, तो चलिए एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। हमारे अनिल सोनी जी ने वियाना से मैसेज भिजवाया है, कहते हैं ऋतु हमारा तो रेडियो भी ऑन है और संडे भी ऑन है, क्या बात है, बस ऑन ही रखिए क्योंकि कल से तो फिर सब काम के झंझट में फंस जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे, हर हफ्ते यही होता है, मंडे टू फ्राइडे देन वीकेंड, मंडे टू फ्राइडे देन वीकेंड, और पता ही नहीं चलता महीना कब निकल जाता है और महीने तो क्या सालें कब निकल जाती हैं, कितने साल यूं ही निकल जाते हैं, निकल चुके हैं जीवन के। एनीवेज एंजॉय कीजिए। और गुरुदेव गांजा आपने भी बहुत अच्छी बात लिखी है, आप हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं चेहरे पे खुशी आ जाती है जब लाइका रेडियो सुनता हूँ, क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात लिख दी, दिल खुश कर दिया। स्वागत है आपका इस शो में। मानू जी आपका भी स्वागत है, विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गुनोवा जी कहते हैं कि दो हफ्ते आपके साथ बहुत अच्छे बीते, सो सेम टू सेम, मैं भी यही कहूँगी, थैंक यू। एंड मोहम्मद यूनुस हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, कहते हैं ऋतु आप जानती हैं हमारी जो मुंबई के मेयर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऋतु तावड़े। तो बस आपको तो मेरी याद आई जाती होगी जब भी आप मेयर का नाम सुनते होंगे। अब मैं क्या करूं, ये ऋतु नाम इतना प्यारा है कि इतने सारे लोगों का है कि गूगल पे एक ऋतु लिखो तो लाखों आ जाते हैं। और आप भी सोचिए आपके घर परिवार में एक ना एक ऋतु जरूर होगी, हर किसी के घर में होगी, या लंदन में इतनी सारी है। और कभी कभी मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि क्या मम्मी आपने मेरा नाम इतना कॉमन रख दिया, हर किसी का नाम है, तो मेरी मम्मी कहती है नाम मैंने वही रखा था जो सुंदर है, अच्छा है, अब सबको अच्छा लगता है तो क्या किया जाए। अब नाम बहुत प्यारा है, अब मैं क्या करूँ, इतना प्यारा नाम है सब रख लेते हैं। एनीवेज थैंक यू मोहम्मद जी हमारा साथ देने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ अर्जुन जी हैं, शेखर जी हैं, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा थैंक यू अमिता जी, मृदु जी, हिमांशु पटेल, तोची जी, हरिश्रुदा एंड ऑफ कोर्स हमारी मालती जी। और अब बाकी के नाम लूंगी लेकिन पहले एक गाना हो जाए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: रफी साहब की आवाज में एक बार फिर से पंडित रवि शंकर शर्मा का म्यूजिक, और ये थी फिल्म संजय खान और बबीता की। और ये फिल्म आई थी 1966 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, और अब 60s का दौर शुरू ही हुआ है, तो चलिए 60s का एक और गाना आपको सुनवाते हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: लेकिन उससे पहले एक नजर आपके मैसेजेस पर और डाल ली जाए। मालती जी कहती हैं कि रितु आपके साथ मुझे हमेशा ही मजा आता है, सो थैंक यू, ये आपका प्यार है। और प्रज्ञा कहती है रितु मैं आई आई आई आई, तो मैं आपके लिए यही कहूंगी आ जा। थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू ज्योति मेहता जी, भरत गंगाराम जी, सहर जी एंड ऑफकोर्स हमारे नरेंद्र भागिया जी, आपने भी आज 4 लाइनें लिखी हैं और अर्ज किया है। क्या अर्ज किया है आपने? लिखा है कि दिल की लबों पे एक, दिल के लबों पे एक दुआ रहती है, हर घड़ी मुझे आपकी परवाह रहती है, रब हर सुख जिंदगी का अदा करे आपको, हर दुआ में मेरी यही इल्तिजा रहती है। हाय क्या बात लिखी है, थैंक यू थैंक यू। और ये मैसेजेस सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हैं। साथ ही साथ वंदना गुड का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अवार्ड मिला है और आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये क्या करती हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, उनको रिसाइकिल करके बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाती हैं, और आपने मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं और उसके लिए आपको अवार्ड मिला है। व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब यू आर डूइंग वंदना जी, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत करती हैं। कभी मिलूंगी तो आपका ये कलेक्शन जरूर देखूंगी। सो थैंक यू हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। एंड राजीव पटेल जी, विनोद जी, हैना, मानू जी, बेल्जियम वाली प्रीति जी, रोशनी जी कहती हैं आपका नाम शॉर्ट एंड स्वीट। हाय रोशनी, थैंक यू, आई लव योर नेम।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: फील गुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप विद रितु शर्मा। दिस इज लाइका गोल्ड।

0: नौशादी के म्यूजिक पर लता जी की आवाज। मेरे महबूब फिल्म से था ये गाना जिसे आप सबने बेहद पसंद किया है। थैंक यू अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जासू जी, फरीता जी आपके मैसेज के लिए कहती हैं आई एम प्राउड ऑफ माई नेम लाइक यू। बिल्कुल, नाम पर तो प्राउड होना ही चाहिए, आपको अपने माँ बाप ने दिया है और इसमें क्या बात है, नाम तो सारे ही अच्छे होते हैं। एंड थैंक यू शरफून, कहती हैं पूरा खानदान मेरे घर आ जा रहा है तो मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी पड़ रही है, तो फिर तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गीतों की ज़रूरत है। शरफून आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाऊंगी ताकि आप थकान फील ना हो और आप बोर ना हो और आपका खाना स्वादिष्ट जल्दी से बन जाए। थैंक यू मिस्टर शेख, थैंक यू मितुल पटेल, संध्या भावसर, आनंद तोमर जी, रजिंदर राज जी, थैंक यू गिरीश जी, भारत में सुन रहे हैं, कहते हैं अब तो आप अगले हफ्ते आएंगी तो आज संडे तो मुझे आपको सुनना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सुनना पड़ेगा, आप मुझे मिस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर पूरा हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू, थैंक यू सभी का धन्यवाद। और सुनवाती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई जा सकते हैं। साउथ होल ट्रैवल को कॉल कीजिए ऑन 02085784 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है और उनके पास बहुत अच्छी दुबई की डील्स भी हैं, तो जल्दी उनसे कांटेक्ट कीजिए।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: And it's 20 minutes till next kickoff.
3: Go, go, go! Feed the gang. Pop to Co-op. Co-op members get two pizzas and four Budweisers for a fiver. Co-op. Owned by you. Right by you.
4: Ends 21st of July. Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. 18 plus. Please drink responsibly. See co-op.co.uk/summer.
5: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
8: Two businesses,
9: same town,
8: same service.
9: One appears on page one of Google,
8: the other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
12: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश।

0: क्या गाना लिखा है साहिर लुधियानवी ने, एक एक शब्दों को चुन चुन कर पिरोया है इस गाने में, और उस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बिठाई है। एक कमाल का कॉम्बिनेशन है और मेरा बहुत ही फेवरेट वाला गाना है। और इसके साथ साथ ढेरों मैसेजेस आए हैं। अमिता जी कहती हैं, मुझे बैक टू बैक दोनों गाने बेहद पसंद आए, चलिए मैंने आपके नाम पर किए। जासू जी का कहना है कि मेरा फेवरेट गाना है, मुझे दीजिए, बिल्कुल मैंने आपको दिया। वासंती जी एडमिंटन में हमारे साथ, संध्या भावसर थैंक यू आपके मैसेज के लिए, एंड थैंक यू साकू जी। साकू जोशी का मैसेज आया है, कहती है क्या बात है ऋतु, जब भी आते हो बाहर ही बाहर आ जाती है, आहा हा, और आपका दिल खुश हो जाता है, और आपका ये मैसेज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया है। थैंक यू साकू जी। और इसके अलावा हमारे साथ हरीश रुदा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड समीमा, समीमा का मैसेज, समीना का मैसेज है या समीमा, मैनचेस्टर में हमें सुन रही हैं, कहती हैं यहाँ तो मौसम थोड़ा क्लाउडी है और ठंडा भी है। हाँ आज मैनचेस्टर में 21 डिग्रीज तक टेम्परेचर है, लेकिन अच्छा है, गर्मी से राहत है। देखिए पता नहीं अगले हफ्ते फिर कब चमकता हुआ सूरज आसमान में बैठ जाए नाराज होकर और गर्मी बरसा दे। एंजॉय कीजिए इस मौसम को। एंड सुनीता, आप कल कॉन्सर्ट में गई थी, आपने बहुत ही मज़े का टाइम बिताया और अब आपको एनर्जी भी चाहिए, थक गई हैं, तो बस एनर्जी के लिए मैं अच्छे गाने बजा रही हूँ, आपके मैसेजेस तो यही बता रहे हैं और आप इंजॉय कर रही हैं, सो थैंक यू। और अब समय हो जाता है थ्री वर्ड्स गेम वाले गीतों के सिलसिले को शुरू करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी जोड़ी 90s की जोड़ी है, तो आज शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है जो 90s की है, क्योंकि उन्होंने 2000 की भी कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके गाने हम नहीं बजा सकते, लेकिन जो 90s की फिल्में हैं उनके दो गाने बहुत ही प्यारे मैंने सेलेक्ट किए हैं, बजाती हूँ, यानी कि जोड़ी नंबर वन का सिलसिला शुरू करती हूँ बस अब से थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो लीजिए मैंने SBI में आपको करेंसी अपडेट बता दिया, लेकिन SBI का रेट्स भी बता दूं, आज 1 पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
2: लाइका गोल्ड,
3: लाइका रेडियो।
1: फुटबॉल स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, स्पेशलिस्ट्स ऑफ फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉ, प्रॉपर्टी, सिविल डिस्प्यूट्स, विल्स एंड प्रोबेट्स एंड फॉर अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स।
0: तो आज ब्राजील और नॉर्वे के बीच में मैच होगा, और हम आपको याद दिलाएंगे एक बार फिर से कि आप हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं रैकलो, उनसे 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं, और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.

0: जहाँ जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: काजल्स कुटुर फॉर एवरी सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस
2: डिस्कवर काजल्स कुटुर साउथहॉल द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR
1: एक्सप्लोर एक्सक्विजिट ब्राइडल वेयर ग्लैमरस पार्टी वेयर ब्यूटीफुल ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड स्टाइलिश आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन
2: प्लस लाइक अवर लिसनर्स गेट 10% ऑफ ऑन ब्राइडल वेयर एंड पार्टी वेयर ओपन 7 डेज अ वीक
1: काजल्स कुटुर साउथहॉल Where every occasion finds its perfect style.
2: Visit gajalscouture.co.uk.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823
7: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
8: Lattu ke halo ne nandala.
7: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
8: Meetha khara, ha khara.
7: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
9: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
10: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
10: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
12: योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस यू आर करंटली नंबर 25 इन द क्यू
13: 25 सीरियसली
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
16: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
17: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: राकेश रोशन की फिल्म जिसमें उनके भाई राजेश रोशन का म्यूजिक था। हीरोइन माधुरी दीक्षित, हीरो शाहरुख खान, और यही है हमारे आज की जोड़ी नंबर वन। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि राकेश रोशन इस फिल्म में एज ए हीरो सनी देओल को लेना चाह रहे थे, लेकिन सनी देओल को लगा कि उन्हें इस फिल्म में काम करने के पैसे ज़रा कम मिल रहे हैं, और वो राकेश रोशन को नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि राकेश रोशन एक बड़े ही अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने राकेश रोशन से मना नहीं किया बल्कि उन्हें अवॉइड करने लगे। और जब राकेश रोशन को लगा कि सनी देओल तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो उन्होंने सनी देओल को इस फिल्म से हटाया और शाहरुख खान की एंट्री हुई। शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा, और देखिए कितना खूबसूरत कहा। और ये जो गाना आप सुन रहे थे ना, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, इस गाने में शाहरुख खान ने बढ़िया डांस किया है, लेकिन इस गाने में शाहरुख खान के पैर में चोट आ गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, और उसने राकेश रोशन से रिक्वेस्ट की कि आप इस गाने में जहाँ पर उनको चोट आई है वहाँ पर एक फ्लैश अलर्ट कर दे उस सीन पर ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि इस जगह पर शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, जैसे कि कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन की चोट को दिखाया गया था। लेकिन राकेश रोशन ने उनकी इस रिक्वेस्ट को नहीं माना और ऐसा नहीं किया, तो ऑब्वियसली शाहरुख खान को थोड़ा तो बुरा लगा होगा, लेकिन क्या किया जाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो ऐसा हुआ था इस गाने के साथ। लेकिन ये फिल्म शाहरुख खान के लिए सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और सनी देओल ने बाद में ज़रूर सोचा होगा कि यार थोड़े पैसे कम मिल रहे थे पर फिल्म कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो हीरोइंस के साथ हुआ है कि उन्होंने फिल्म छोड़ी और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: To chaliye ab sunwate hain aaj ki jodi number 1 ka dusra gana.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: फिल्म थी अंजाम। आप सुन रहे हैं हमारी जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी नंबर वन का आखिरी गाना जो थे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान। और आपको बताएं कि ये जो फिल्म थी अंजाम, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई हीरो ही नहीं था, मेन हीरो विलन था और थी हीरोइन माधुरी दीक्षित। क्योंकि इसमें हीरो के रूप में दीपक तिजोरी को लिया गया था, और जब उन्हें फिल्म में लिया था तो बताया था कि तुम हीरो होगे और तुम्हारा बहुत सारा रोल होगा, लेकिन उनका रोल बहुत ही कम था। सारी फिल्म में शाहरुख खान ही छाए हुए थे। और फिल्म लोगों को पसंद आई थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तो फेवरेट फिल्म्स में से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था लेकिन सेकंड हाफ में तो इतनी मार कटाई और खून खराबा था कि मुझे लग रहा था कि अगर वो हिस्सा थोड़ा कम किया जाता तो शायद फिल्म मेरे लिए और अच्छी हो पाती। एनीवेज, गाना बहुत ही सुंदर था, और ये गाना जब भी सुनती हूँ मुझे अभिजीत भट्टाचार्य की वो कॉन्सर्ट याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इसमें लाइव हमारे सामने गीत गाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके वहाँ पर जाकर। एंड आई एम श्योर कल हरिहरन जी का कॉन्सर्ट था, मैं कल बिजी थी, मेरा दिल तो बहुत था लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई, लेकिन आप में से बहुत साथी गए हैं वहाँ पर। हाउसफुल शो था, सोल्ड आउट शो था, आई एम श्योर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो सिंगर तो है ही वो बहुत अच्छे, लेकिन क्या इंसान है, मतलब इतने बढ़िया, इतना सरल स्वभाव, हंसमुख, मुझे इतना अच्छा लगा कि जब कोई इंसान बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और तब भी वो सरल रहता है तो वाकई में वो इंसान लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। क्योंकि ऊपर पहुँचने के बाद घमंड आ जाना बहुत कॉमन होता है और बहुत लोगों में आ जाता है, लेकिन जिन लोगों में नहीं आता मुझे लगता है वो ही असली हीरो होते हैं, और हरिहरन जी कुछ वैसे ही थे। और बताएं, जब मैं उनसे मिली, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका वो गाना बहुत पसंद है, तू ही रे, तो अगर आप मेरे लिए वो एक लाइन गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जस्ट उन्होंने बिना कुछ कहे इतने प्यार से मेरे लिए वो गाना गाया, और मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया जो मैंने अपने सोशल्स पे पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। यू नो, ये जो मेमोरीज होती हैं ये लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं और मेरे साथ भी रहेंगी, और जो इम्प्रेशन हरिहरन जी का मेरे ऊपर पड़ा है ना, बस कमाल का है, मैं अब कभी भी नहीं भूलूंगी उसे। तो बहुत अच्छा टाइम था, और आप मुझे बता सकते हैं कि उनका कॉन्सर्ट कैसा रहा? आई एम श्योर सुपर डुपर हिट रहा होगा, बहुत आपने जो भी गए थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा।
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
2: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
3: Leica Extra Podcast Update.
0: तो आपको याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है, और इस बार का टाइटल है राइज इन वुमेन्स क्रिकेट, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने। तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जरूर सुनिए, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: Leica Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo, or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
8: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
12: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
13: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
14: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
12: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
13: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
15: Feel the fun. PlayOjo.
16: 18 plus, gamble aware.
17: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: प्यार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: जी आज सोमवार नहीं, आज इतवार है, लेकिन उनको उनसे प्यार है ये तो हमने फिल्म में देखा है। और अहिर यादव जी कहते हैं कि ये गाना मेरे नाम कर दो ऋतु, बिल्कुल मैंने आपके नाम पर कर दिया। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, आंटी जी हमारा साथ दे रही हैं, राजीव पटेल जी हमारे साथ हैं, शेखर आनंद जी हैं, भारती जी हैं, संध्या भावसर हमारे साथ हैं। और एक मैसेज आया है परवीन शुक्ला जी का, कहते हैं कि वो गाना आपने बजाया था ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ये गाने ने मुझे मेरे पार्टनर की याद दिला दी है जो 5 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए और सारी यादें वापस ताज़ा हो गई। आप शो को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस यही कहूँगी, क्या कहूँ कि देखिए जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रह ही जाती हैं। तो बस आपको गीत पसंद आया, चलिए गीत हमने आपके नाम पर किया, थैंक यू साथ देने के लिए। उसके अलावा हमारे साथ हैं सुमित्रा रावल, वुडफुट ब्रिज में प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सुमित्रा जी। अर्जुन जी सिंधी पकौड़े खा रहे हैं, ओहो हो करती हूँ, खाने पीने की बात पे तो मैं आने ही वाली हूँ क्योंकि लंच टाइम होने वाला है या फिर कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम होगा या कुछ लोग ब्रंच कर रहे होंगे, तो संडे के दिन तो अच्छा खाना पीना बनता ही है, यू नो पूरे हफ्ते ये नहीं खाना वो नहीं खाना, डाइटिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अरे हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप जी भर के मनपसंद की चीज़ें खा पाए, नहीं तो जी किस लिए रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं, है ना। तो करते हैं क्या आप संडे को चीट डे, मैं बात करती हूँ इस बारे में, पहले जरा ये बता दूं।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: तो आज 1 pound आपको देगा 127.43 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: So Gold Rate is 100.6 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
5: एक बहाना बन गया अच्छा
6: अच्छा

0: लीजिए किशोरदा की आवाज में ये गाना तेरे चेहरे में वो जादू है। और वाकई में उस जमाने में हेमा मालिनी के चेहरे में क्या जादू था। इनफैक्ट आज भी इतनी खूबसूरत और इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं हेमा जी, क्या कहने हैं उनके। धर्मात्मा फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आशा भोसले और किशोरदा की आवाजों में माय फेवरेट, गिरीश जी का फेवरेट और हमारे सारे लिसनर्स का फेवरेट ये वादा रहा फिल्म का गीत। और दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। कैसे हैं आप सब? अभी अभी जुड़े हैं, बहुत सारे गाने मिस कर दिए हैं आपने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस आवर में साथ दीजिए। इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम भी खेलते हैं और मैं आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी सुनवाती हूँ। और इस बार तो आपको एक बोनस मिलेगा, यानी कि दो की बजाय तीन ब्लैक एंड वाइट सुनने को मिलेंगे, बिकॉज हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम जी जो हैं तो उनका भी गीत मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की हमारे थ्री वर्ड्स गेम की। तैयार हैं? चलिए फिर, जो कुछ भी कर रहे हैं, ब्रंच, लंच या कुकिंग, करते रहिए और थोड़ा कानों को हमारे रेडियो सेट्स के पास रखिए ताकि तीन वर्ड्स मिस ना हो जाएं। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है कुसूर, दूसरा है जुदा और तीसरा है खफा। ये फिल्म आई थी 1966 में, आर डी बर्मन का म्यूजिक है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। कौन सा हो सकता है ये गाना, सोचिए। आई रिपीट, कुसूर, जुदा, खफा, 1966 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक और आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, कौन सा गाना है? अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भिजवाइए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये वन पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: नौशाद के म्यूजिक पर बैजू बावरा फिल्म से था ये गाना। और इसमें मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर की आवाजें भी शामिल थी शमशाद बेगम के साथ। आप जानते हैं शमशाद बेगम इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, और ये धुन इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि मुझे ये धुन सुनकर बहुत सारे और गीत भी याद आ रहे थे। शादी ब्याह में जो गीत बजते हैं या फिर कुछ ऐसे भजन भी हैं जिनमें इस धुन को यूज़ किया गया है, और इस गाने को सुनकर मुझे वो गाने याद आ रहे थे कि अरे ये वही धुन है जो इतनी पॉपुलर है। एनीवेज़ ये गाना आप सबने इंजॉय किया है। काशिफ जी कहते हैं कि ये गाना ऋतु मुझे दे दो, मैंने आपके नाम किया। काशिफ जी आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। और आपके जवाब मिलते जा रहे हैं। हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाले गाने को बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है और कुछ को दुविधा है, तो सोचिए सोचिए और फिल्म के साल पर जोर दीजिए। ये 1966 की फिल्म है, हाँ जी। सोचिए कौन सा है ये गाना, नहीं तो मैं तो हूँ ही सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं सुनवाने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: ये है लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक। Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: मुकेश जी और लता जी की आवाज़ों में था ये गाना, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार वहीदा रहमान की फिल्म से लिया था और म्यूजिक था रवि शाह रवि पंडित रवि शंकर शर्मा जी का।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Riti Sharma on Like a Gold.
0: बिल्कुल आप आपका मनपसंद रेडियो सुन रहे हैं जहाँ पर ऋतु शर्मा ही है आपके साथ और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिए हैं। तो अगला आज का ब्लैक एंड वाइट क्लासिक सुनवाने से पहले मैं ज़रूर उनके नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने सही सही जवाब दिया है। शालिनी जी आपका जवाब आया है सही सही, निधिश जी, अमित, नीलकंठ, नरेश पटेल, नरेन पटेल, दिव्या जी हैरो से, रजनीश, गुरशरण, फरीदा जी, मालती जी, उल्लास, सहर, नीलेश तन्ना, संध्या भावसर, अयूब चौहान जी, करसन पिंडोरिया जी, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। और आज कुछ कम जवाब मिले हैं जबकि गाना बहुत पॉपुलर है और जब आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे उत्तरे की, बिल्कुल आमिर खान के स्टाइल में उत्तरे की, ये गाना था ये तो हमें पता होना चाहिए था। एनीवेज आराम से बैठ जाइए, सुनवाऊंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन पहले आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना हो जाए।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: नासिर हुसैन की फिल्म है और ओपी नैयर का म्यूजिक है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये सब करते हुए मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले कैसे लग रहे होंगे। लेकिन ओपी नैयर साहब ने अपने अक्सर के गीतों में ये सब करवाया है और उन्होंने किया भी है, सिंगर्स ने भाई, उनके गीतों की ये पहचान है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना और आप सबको पसंद आया। और बस अब थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ गाना कौन सा है। और मुझे एसएस भोगल जी एंड गिरीश जी भारत से, आपने भी सही सही जवाब दे दिया है और कुछ साथी कह रहे हैं रिपीट कर दो, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब रिपीट रहने दो, अब बस गाने को सुनाने का समय आ गया है, तो गाना एंजॉय करो। बजाती हूँ बस अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो दुबई चले जाइए, अब तो रेस्ट्रिक्शंस भी हट गए हैं और साउथ हॉल ट्रैवल की बड़ी अच्छी डील्स भी चल रही हैं। उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: If you're ready to grow your business, at Barclays we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
6: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 02031299840. Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full-week summer camps with code LEICA10. Visit book.robothink.co.uk/LEICA.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com। Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी और मनमोहन सिंह साहब की आवाज में सुन रहे थे आप वारिस फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा। फिल्म का संगीत आया था उत्तम जगदीश जी की तरफ से। फिल्म की अगर रोचक बातों के बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालें तो बड़ी कमाल की फिल्म और मेरी मोस्ट फेवरेट स्मिता पाटिल जी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आ रही थी। थोड़ा सा उनके बारे में भी बताऊँगा मेरा उनके साथ कैसा कनेक्शन, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का एक फैक्ट जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। स्मिता पाटिल एक मंझी हुई अदाकारा, मल्टी टैलेंटेड, लेकिन फिल्म से पहले जब रिलीज से पहले उनका निधन हो गया था 1986 में, और उसके बाद उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री रेखा जी ने उनके बचे हुए जो डायलॉग्स थे उन्हें अपनी आवाज़ दी थी। और रही बात मेरी कि मेरा कैसा कनेक्शन है और मुझे स्मिता जी इतनी पसंद क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो सादगी है वो बड़ी ही प्यारी है, वो दिल में उतर जाती है। और यकीन मानिए जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, उस दुनिया से चली गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था इस तरह की कोई अभिनेत्री भी हैं हिंदुस्तान में। जब बाद में मैंने उनकी फिल्में देखी, शराबी, नमक हलाल, बाजार, अर्थ, भीगी पलके और कुछ और फिल्में, तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऊपर वाले ने इन्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। हम अभागे हैं क्योंकि एक अच्छी अदाकारा हमारे बीच नहीं रही और बहुत कम वक्त हिंदी सिनेमा को दे पाए, लेकिन कमाल का बेहतरीन काम जो आज भी यादगार है, जैसा कि ये गीत अभी आपने जो सुना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डन वर्ड का इंतजार कीजिए, दिमाग की बत्ती भी जलानी होगी, लेकिन आज गाने होंगे जो आपको प्रेरित करेंगे आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सुनते रहें गोल्डन राग, सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.75 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Gargels Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
2: Discover Gargels Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
2: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Gargels Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
2: Visit gargelscouture.co.uk.
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas screens start from just 711,000 pounds.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
7: London, good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Kerry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
13: Like a Goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Goal. Aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Rafi sahab ki dil ko chhu lene wali awaaz mein bhi ye raat film ka ye gana sun rahe the aap, aur itna khoobsurat sangeet isliye tha kyunki Roshan sahab aur Majru Sultanpuri sahab ki jodi jo thi. और इस फिल्म का एक गाना और भी बहुत ही खूबसूरत है जिसमें डुएट गाया है रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी ने. गाने के बोल हैं, ऐसे तो ना देखो कि बहक जाए कहीं हम. बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज भी हुआ है. हालांकि मैं ज़्यादातर जो गाने आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ये भी रहती है मेरी कि उनको मैं देख भी सकूँ. कई बार उनको देखने के बाद और जब उसने दोबारा हम सुनते हैं, सिर्फ उसका ऑडियो सुनते हैं ना, तो गाना बिल्कुल आपके दिल में बस जाता है. और कुछ ऐसा ही गाना है जो अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं. बस गुजारिश आपसे यही है कि जिस अंदाज में मैंने आपसे बोला है ना कि इस गाने के साथ कनेक्ट हुई है, वैसे ही आपको होना है. ये दो दिलों के जश्न का सबब है.
0: On Rag with Golden Rag.
3: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
3: या चुप रहूं
1: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

0: किशोर दा और आशा दाई की आवाज में दीवार फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। लेकिन अगला गाना भी कमाल का है, रवि साहब और लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम सस्पेंस है, नहीं रे बताएंगे, बस गाना सुनिए और खो जाइए इस गाने में।
1: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: रवि साहब लता जी की आवाज में स्वयंवर फिल्म का एक गाना था, सस्पेंस खत्म हो गया। 1980 में ये फिल्म आई थी। भाई कहा जाता है प्यार इश्क और मोहब्बत का जब नशा चढ़ जाता है ना, तो उसकी मदहोशी में आदमी इतना गुम हो जाता है कि कुछ उसे समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। और कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था लता जी और किशोर दा ने अपनी आवाज़ों में, कुछ इस तरह का इंग्रेडिएंट डालकर एक नशा तैयार किया था, और वो नशा आज तक उनके चाहने वालों के सर पर चढ़ा हुआ है। और वो क्या रेसिपी थी, वो रेसिपी अगले गाने में आपको पता चलेगी। प्यार इश्क और मोहब्बत का जो नशा होता है उसके इंग्रेडिएंट और रेसिपी अगले गाने में लता जी और किशोर दा की आवाज़ में। बस छोटा सा क्ल्यू देता हूँ, फिल्म आई थी 1970 में। छोटे से ब्रेक के बाद नई रेसिपी आपके लिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. ये है Leica Gold. Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
5: Lattuke halo ne nandala.
3: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
5: Meetha khara, khara.
3: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
6: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
9: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
10: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
11: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
12: Feel the fun. PlayOjo.
13: 18 plus, gamble aware.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heat wave.
14: Khola jaye phoolon ka shabab, usme phir

0: लता जी और किशोरदा की आवाज में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना है। इंग्रेडिएंट तो आपको पता चली गए होंगे, एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट कीजिए अगर आप लोग इस रेसिपी को भूल चुके थे। अगला गाना और उसके बाद है हमें आपको बताना आज के गोल्डन राग का गोल्डन वर्ड। याद रखिए, दिमाग की बत्ती जलाने का वक्त आ गया है।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.5 पाकिस्तानी रुपीस 371.51 श्रीलंकन रुपीस 447.95 बांग्लादेशी टका 164.17 अफगानी 87.89 एंड 1 US डॉलर 1.33.
2: Like radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.61 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Feel good classics all day. Like a gold.

0: सीधे दिल में उतर जाने वाली मुकेश साहब की आवाज, जौहर महमूद इन गोवा फिल्म, बड़ी कमाल की फिल्म थी, बहुत दिनों बाद मैंने देखी दूसरी बार, और बड़ा ही कमाल का स्क्रीन प्ले इस फिल्म का। कल्याण जी आनंद जी का खूबसूरत संगीत, और आयर जौहर साहब मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, इनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन कहने का वक्त आ गया है, दिमाग की बत्ती भी जलाने का वक्त आ गया है। अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड क्या है, जो अक्सर हम अपनी बोली भाषा में इस्तेमाल करते हैं, हाल चाल। याद रखिए, हाल और चाल है आज का गोल्डन वर्ड। खंगालिए अपनी फरमाइशों का पिटारा।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: London वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए, या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 आवर लाइन।
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
11: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
12: On Rug with Golden Rug.

0: 90s की सनसनी सानूदा यानी कि कुमार सानू साहब और अलका याग्निक जी की आवाजों में सरफरोश फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था। अमित पटेल जी, शालिनी और राखी जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। और पहला गाना हमने आपको अपनी तरफ से सुनाया था अखियों से गोली मारे। दिमाग की बत्ती जल चुकी है, बहुत सारे गाने हम तक पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप सबके लिए आज का गोल्डन बर्ड वो है हाल और चाल। अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुकेश साहब की आवाज़ में। किसने इस गाने की फरमाइश की है वो भी हम आपको जल्दी से बताएंगे और उसके बाद बहुत सारे गाने, बहुत खूबसूरत गाने आप लोगों के पिटारे से निकलकर जो पहुंचे हैं एक एक करके देखते हैं आज किसका नंबर आने वाला है। अगला गाना मुकेश साहब की आवाज़ में, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.75 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को via branch, online और Yono SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंचने वाला है। फिलहाल आज का मैच ब्राजील और नॉर्वे के बीच 9 बजे शुरू होगा और बिल्कुल भी आप मत भूलिए 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकता है हमारे स्पॉन्सर रैक लॉ की तरफ से अगर आप मेंशन करते हैं लाइका नेटवर्क।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: पत्थर के सर मुकेश साहब की आवाज में प्यारा सा ये गीत हम तक पहुंचाया था सौरभ, सुमित और रंजना जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का. ही अगला गाना आ रहा है विंटेज गोल्ड की याद दिलाने के लिए आशा ताई और किशोरदा की आवाज का जादू.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: रियल लाइफ में मधुबाला और किशोर दा, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत, और फीमेल वॉइस थी आशा ताई की, और कमाल की जुगलबंदी, आखिरी में यॉडलिंग भी सुनाई दी आपको के की यानी किशोर दा की, और ये गाना हम तक पहुंचाया था बहुत सारे लोगों ने, अमित जी, महेंद्र पटेल साहब, उल्लास जी, संतोष जी, करसन पिंडोरिया, अर्जुन साहब, हर्षा लाड, मनोहर जी और संध्या भावसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को हम तक पहुँचाने

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में कारवा फिल्म का सुपर डुपर हिट नगमा हम तक पहुंचाया था सोमिला मुंगुर जी और कंचन एंड रूपा जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही.
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रैवल.
0: साउथ हॉल ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेन all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. All at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: आप सुन रहे हैं Golden Rag, अनुराग के साथ.

0: सलामी फिल्म का गाना सुन रहे थे आप अलका याग्निक जी की आवाज में, और ये गाना हम तक पहुंचाया सपना जी और अयूब चौहान जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: ये है लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट,
0: पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 23, टाइटल राइज इन वुमेन क्रिकेट, होस्टेड बाई दीप राजा। बहुत सारे मुद्दे होंगे जो आपको सुनने चाहिए और इस पॉडकास्ट को जरूर सुनना चाहिए।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
8: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
9: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
10: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
9: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: Have you noticed the way fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
14: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: हाल चाल ठीक ठाक है किशोरदा और मुकेश साहब की आवाज मेरे अपने फिल्म का ये संगीत आपने गाना सुना और सलील चौधरी साहब का संगीत था इस फिल्म के लिए और ये गाना बहुत सारे लोगों ने हमसे फरमाइश की थी इस गाने को प्ले करने के लिए। हरप्रीत जी बहुत दूर से कनाडा से गुड मॉर्निंग आपको, के भामरा जी, भाविन भगानी जी, फरीदा गुलाम अली जी और टोची पनेशर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को चुनने के लिए। अगला गाना रफी साहब की आवाज में दिल को छू लेगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए £1 के बदले इंडियन करेंसी में 127.44 पाकिस्तानी रुपीस 371.56 श्रीलंकन रुपीस 447.87 बांग्लादेशी टका 164 अफगानी 87.81 एंड US dollar 1.33
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.61 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold, non-stop classic.

0: क्या बात है, बेटी बेटा फिल्म का ही गाना सुन रहे थे आप। और ये गाना हम तक पहुंचाया था नलिनी जी और राजीव जी ने, और अगला गाना आ रहा है हरी जी, पंकज जी और शादाब जी के फरमाइश के पिटारे से निकलकर। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी, 1960 में फिल्म आई थी। अगला घंटा है आप सबके लिए एक बार फिर से दिमाग की और दिल की बत्ती जलाने का, क्योंकि हम देने जा रहे हैं आपको गोल्डन राग के 3 ऑप्शंस। इंतजार कीजिए अगले घंटे का।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Cajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Cajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Cajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit cajalscouture.co.uk.
4: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo, or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5 कोर्स लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
8: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स।
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
11: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
1: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. On Rug with Golden Rug.

0: जब भी कोई कंगना बोले किशोरदा की आवाज में, शौकीन फिल्म का बड़ा ही शरारत से भरा हुआ ये नगमा भी आपने सुना। और अब वक्त आ गया है आपको आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस बताने का। कायदे प्लस कानून ये है कि हम आपको तीन गाने के ऑप्शन देंगे, ए बी एंड सी, जिनमें से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए उसे वोट की तरह हमारे स्टूडियो के नंबर पर कास्ट करें, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा हमेशा की तरह आज का विजयी गोल्डन राग। जी हाँ, तो पेश है आज आपके लिए गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना, रवि साहब की आवाज। ऑप्शन बी है, तुमने मुझे देखा, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। ऑप्शन सी है, तस्वीर तेरी दिल में, फिल्म का नाम है माया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन ए है, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द फिल्म दिल तेरा दीवाना। ऑप्शन बी है, तुमने मुझे देखा, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। और ऑप्शन सी है, तस्वीर तेरी दिल में, लता जी की आवाज, माया फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना। अपने अपने ऑप्शंस को अब चुनने का मौका आ चुका है, वोटिंग लाइन्स हो चुकी है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.75 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: शाम को यानी 9 बजे होने वाला है आज बड़ा ही अहम मुकाबला ब्राजील और नॉर्वे के दरमियान। अगर आप वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप को, तो आप याद रखें आपको 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस मिल सकता है स्पॉन्सर्स रैक लॉ की तरफ से, अगर आप मेंशन करते हैं Leica Network.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Leica Gold.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
8: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में। भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Mom! have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
12: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding, use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533 065 549.
13: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
15: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
16: 25? Seriously?
15: Sounds like Ojo time.
16: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
15: Sorry about the wait. How can I help?
16: You can help me celebrate. I won.
17: Feel the fun. Play Ojo.
18: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gamble aware. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play LAIKA Gold aur online suno LAIKAGold.com pe.
19: Artist of the week is brought to you by our new podcast LAIKA Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम जी के साथ रफी साहब की आवाज। फिल्म का नाम छू मंतर, 1956 में ये फिल्म आई थी। और एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, क्योंकि वोटिंग लाइन अभी तक हैं ओपन। ऑप्शन ए है मुझे कितना प्यार है तुमसे, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। ऑप्शन बी है तुमने मुझे देखा, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। और ऑप्शन सी है तस्वीर तेरी दिल में, फिल्म का नाम है माया। वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहे। अगला गाना लता जी और किशोरदा की आवाज में,
1: ये है लाइक अ गोल्ड। 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता जी किशोरदा की आवाज में बड़ा ही नटखट सा गाना दो चोर फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा भी आप सुन रहे थे, और अगला गाना लता जी की आवाज में सुनाएंगे, लेकिन इत्मीनान से बैठ के ये सुनिएगा गाना, क्योंकि आपके दिल की घंटी को ये जरूर हिट करेगा। बहुत ही प्यारा गाना, फिल्म का नाम हरजाई, और उसके बाद हम आपकी बात कराएंगे हमारे करेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी से, जो सूरत हाल बताएंगे T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: On Rag with Golden Rag.

0: लता जी की आवाज हर जाए फिल्म का ये गाना, और इसके बाद हम सीधे जुड़ते हैं कमल प्रभाकर जी से.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: हमारे करेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी को कॉल करने की कोशिश की जा रही है.

0: देखते हैं कि इस आज के बिजी मैच में कितना वक्त दे पा रहे हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: अनुराग जी, थैंक यू सो मच। वी आर इन लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स इज लाइक ए अमेजिंग पिक्चर। इतनी दुनिया है, वी हैव बीन वेरी वेरी बिजी। सो क्या है दैट द टॉस वाज वन बाय ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इलेक्टेड टू फील्ड, इंग्लैंड इज नाउ बैटिंग एट द मोमेंट, दे आर प्लेइंग स्टेडी, 6 runs फॉर नो लॉस इन द फर्स्ट ओवर। बट बड़ा जबरदस्त मतलब क्राउड है, ऑल सेट फॉर अ ग्रेट फाइनल, T20 26 का फाइनल इन T20, बट अमेजिंग क्रिकेट, वी गोना हैव अ ग्रेट डेज क्रिकेट टुडे। तो वी गिव यू ऑल द अपडेट्स लेटर।
0: थैंक यू सो मच कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू जी, बाय बाय बाय बाय।
2: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW Pays। विजिट twpays.com/Leica फॉर अ चांस टू विन अ फ्री कार्ड टर्मिनल। T's and C's apply।
3: एंड RoboThink, दिस समर गिव योर चाइल्ड अ हेड स्टार्ट इन AI, रोबोटिक्स एंड कोडिंग। प्लेसेस आर लिमिटेड। सेव 10% ऑन फुल वीक समर कैंप बुकिंग्स विद कोड LEICA10 एट पार्टिसिपेटिंग लोकेशंस। बुक नाउ एट robothink.co.uk. Terms apply.
4: When you're watching the match in bed, when you're streaming a game on your commute, when you just have to catch all the action.
5: Come on, come on, go!
4: Oops, sorry.
5: Who cares? What's a spilt coffee after a goal like that?
4: Nothing brings us together like great TV. And a TV license covers you to watch all TV channels, including live TV on streaming services, so you can cheer along no matter what time you're watching the football. Search TV license together.
6: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
10: London. Good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB24 AX. Once you visit, you come again and again.
12: Chai break ho ya busy work day, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही टीमअप के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Like a Gold.

0: गुम है किसी के प्यार में, रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गाना किशोर दा और लता जी की आवाज में। और इसी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आज के लिए बंद हो चुकी हैं वोटिंग लाइंस और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं किस ऑप्शन को आपने आज भारी मतों से बनाया है बिचाई।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.21 पाकिस्तानी रुपीस, 371.26 श्रीलंकन रुपीस, 447.53 बांग्लादेशी टका, 163.98 अफगानी 86.68 एंड 1 US डॉलर 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.61 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
5: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

0: तस्वीर तेरी दिल में, लता जी और रफी साहब की आवाज, माया फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, संगीत था सलील चौधरी साहब का। अब जल्दी से बिना वक्त गवाए नाम लेते हैं किसने किसने इस ऑप्शन को भारी मतों के साथ विजयी बनाया है। प्रज्ञा जी का सबसे पहले नाम आता है, इसके बाद ज्योति गिरीश शाह, हरमिंदर जी, के भामरा जी, अमित सुमित चौरसिया, सलमा जी फ्रॉम कैंट से, और विजय गनोवा साहब, संतोष जी, मनोहर जी, करसन पिंडोरिया, निर्मला जी, पन्ना रजानी, शाकू जोशी, सालिम अख्तर और पंकज वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को सबसे ज़्यादा वोट देने के लिए। सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे मुझे कितना प्यार है तुमसे, दिल तेरा दीवाना फिल्म से। लेकिन चलिए, सरिता जी आ रही है नेक्स्ट आपका दिल को दीवाना बनाने के लिए। मेरी होगी आपसे मुलाकात अगले सप्ताह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें।
1: ये है Leica Gold.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, like a listener, get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit kajalscouture.co.uk. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: Dreaming of paradise?
8: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
7: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
7: At all protected.
9: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है,
13: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/leica या कॉल कीजिए 02031299840। TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
14: 23 डेज साउथ अमेरिका इन नवंबर और अप्रैल, फर्स्ट 10 पैसेंजर्स अप टू 300 ऑफ। कॉल सोना टूर्स ऑन 02089510111 और विजिट sonatours.co.uk।
15: सो यू डीकैफ ओट मिल्क एक्स्ट्रा बट नॉट पाइपिंग हॉट, 4 पंप्स ऑफ कैरामेल, नो शुगर, स्मॉल लाटे इन अ लार्ज कप, that will be 10 minutes.
16: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
17: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
15: Here's your decaf oat milk, extra but not piping hot.
16: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
18: Feel the fun, Play Ojo.
17: 18 plus, gamble aware.
19: Next,
18: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
19: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: भाई बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गीत पसंद आए होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। गीतों से पहले ज़रा आपसे जान लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थी रखते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाएं तो मुझे इशारा आपकी तरफ से चाहिए, जहां भी बैठे, जिस भी जरिए को आपने चुना है। उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है, तो मुझे जल्दी से आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपकी आंखें टेलीविज़न पर हैं और कान इस तरफ हैं, या फिर पूरी तवज्जो के साथ रेडियो ही सुन रहे हैं। जो भी करते हैं आप साथ साथ काम वो करते रहिए, लेकिन कान जो हैं वो इस तरफ होने चाहिए। ये मैं चाहती हूँ कि आप इधर ही सुने। क्या कहती है सरिता? चलिए अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जरा ये मैसेज आप तक पहुंचा दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो यो £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू कितने पैसे, ज़रा जान लें आप भी। आज मिलेंगे आपको 126 rupees and 75 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Right, bhi bahut exciting ho raha hai ab to, and aaj hai match Brazil and Norway ke beech, raat 9 baje shuru hoga, and this is a round of 16 in New York, New Jersey Stadium mein ye match hone wala hai. Don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsor Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई गीतों में आप पहचान ही चुके हैं कि क्या कॉमन है, एक वर्ड है जो हर गीत में सुनने को मिल रहा है। और इस गीत में दो आवाज़ें जो आपने सुनी वो थी लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आई मिलन की बेला, जो 1964 में आई थी, उस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को। जो मेरे साथी बराबर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस लिखकर बता रहे हैं कि यस सरिता, हमारे कान तुम्हारी तरफ ही हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आपको भी कोई ख़ास गाना याद आ रहा है इस वर्ड से, और ये वर्ड क्या है, सनम, वेरी इजी। हाँ, वो गीत मत कहिएगा जो मैं भी प्ले करना चाहती थी, लेकिन ये कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। बेखुदी में सनम, ये गीत मैं नहीं प्ले कर पाऊँगी। इसके अलावा आप अगर पुराना कोई भी गीत आपको याद आ रहा है और आप चाहते हैं प्रोग्राम में शामिल हो तो मुझे बता सकते हैं। ज़्यादातर गाने 90s के हैं जिसमें सनम वर्ड आता है। पुराने गीतों में सनम इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सरिता के पास लिस्ट है। ये नहीं कि मैं स्टक हो गई हूँ, मैं वैसे ही आपसे कह रही हूँ, अगर आपको बताना है तो बताइए, अपनी पसंद मुझ तक पहुँचाइए।
0: Like our gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Tune से आप पहचान गए होंगे, शंकर जयकिशन की धुन है, लता मंगेशकर एंड मुकेश जी की आवाज़ें, फ्रॉम द फिल्म संगम।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई फरमाइशें आपकी आ रही हैं. Let me just see कि मैं किस किस की फरमाइश को पूरा कर पाऊंगी. अगर आपका नाम ऑन एयर ना भी ले पाऊं तो मेरे मैसेजेस आपको मिल ही रहे हैं. अगला गीत मुकेश जी की आवाज़ में बहुत प्यारा गीत है और बहुत अरसा हो गया सुना भी नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: क्या बात है, क्या लिरिक्स हैं, क्या धुन है, क्या आवाज़ है। मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत फिल्म दीवाना से चुना था मैंने। बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, थैंक यू एवर सो मच, बट लेट्स सी कितने गीत मैं इस आवर में शामिल कर पाती हूँ। सुनते रहिए, मैसेजेस भेजते रहिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: I've been asked by Shredded Wheat to read out their ingredients list. Drum roll. Whole grain wheat. No, that's it. A single ingredient, high fiber cereal. Shredded Wheat. It simply does it. I'm telling you, that's it. Applies to Shredded Wheat bite size and big biscuit only.
3: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए

0: और जिसने भी इस गीत की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई थी, ज़रा स्माइल करते मुझे पता चल जाएगा कि आपने सुन लिया है। और अगर आज आपका बर्थडे या शादी की सालगिरह है या कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में। यू आर शेयरिंग योर बर्थडे टुडे विद जावेद अली, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने लेट 2000 से ही गाना शुरू किया, इसलिए मैं उनका कोई गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी। एंड जाहिद खान इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह या कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. किस किस करेंसी में कितने कितने पैसे तो जान लीजिएगा। इंडियन रुपीस आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 127 रुपीस एंड 46 पैसेस। पाकिस्तानी रुपीस 371.49, श्रीलंकन रुपी 447.62, बांग्लादेशी टका 164.2, अफगान अफगानी 86.2 एंड US डॉलर्स 1.33।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 100 pounds and 61 pence का एक ग्राम सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Non-stop classics. Classics. Like a gold.
0: भी मेरे बहुत से साथियों ने इस गाने की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई है, फ्रॉम द फिल्म पत्थर के सनम। आप भी जरा अपने आप ही ताली बजा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा आपकी पसंद पूरा कर रही है सरिता इस वक्त। फ्रॉम द फिल्म पत्थर के सनम एंड दिस इज द टाइटल ट्रैक।

0: मनोज कुमार एंड वहीदा रहमान इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे एंड साथ में थी प्राण एंड मुमताज़ इज़ वेल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में यह खूबसूरत सा गीत सुना और उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर इंजॉय भी किया होगा। एंड जो मेरे साथी बराबर मैसेजेस लिखते जा रहे हैं उन सब के मैं एक बार इनाम ज़रूर लेना चाहूँगी। मिसेस शेख थैंक यू, वत्सला जी, संध्या बाप्स, मोहम्मद साहब आपका भी, हरप्रीत आप, हाजीत आप सुन रही हैं अमेरिका में हमारा प्रोग्राम, कैनेडा में, एंड भारती जी, तोची जी, रोशनी जी, काशिफ, जैस्मिन, सलमा मेडस्टोन कैंट में, एंड जगतार्स जी वैंकूवर में, विजय गनोवा जी आपने भी कहा था एक गाना मेरे नाम कर दीजिएगा, सहर, हना, अर्जुन जी, संतोष जी, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, प्रीति शाह, इरम, इंतशाब, निर्मला जी, अमिता जी, रानी ऑफ स्लॉ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे इस प्रोग्राम को साइलेंटली इंजॉय कर रहे हैं उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी, इसी तरह से मेरा साथ देते रहें। एक और गीत की फरमाइश अभी अभी मुझ तक पहुँची है एंड वत्सला जी ने उस गीत की फरमाइश की, सॉरी अब समय के अभाव के कारण मैं इस आवर में गीत शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी पसंद को ज़रूर मैं ध्यान में रखूँगी। तो इसी तरह से साथ देते रहिएगा। आज अगर आपका बर्थडे या शादी की सालगिरह है, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। एंड आप शेयर कर रहे हैं अपना बर्थडे जावेद अली के साथ एंड जायद खान के साथ, और भी कई खुशी के मौके होते हैं। और अगर आपकी आंखें जमी हुई हैं टेलीविजन पर तो देखते रहिएगा।
1: ये है लाइका गोल्ड, काजल्स कुटियर फॉर एवरी सेलिब्रेशन, एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस।
2: डिस्कवर काजल्स कुटियर साउथहॉल, द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल, UB1 1LR.
1: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories and stylish outfits for men and women.
2: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
2: Visit kajalscouture.co.uk.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: But how? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
14: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।
15: दिस इज लाइका।

0: बैक टू बैक तो गाने आपने सुने और फिल्म फतेह का गीत एक अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ। मुझे उम्मीद है, इनफैक्ट मेरी जो हिस्ट्री है ये बता रही है कि 2021 के बाद ये गाना आज प्ले हुआ है इस स्टेशन से। फतेह था फिल्म का नाम एंड ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, इसलिए मैंने इस गीत को प्रोग्राम में जगह दी। फतेह जिसमें काम किया था संजय दत्त ने, साथ में थी सोनम। डू यू रिमेम्बर सोनम? सोनम यस, 90s में इन्होंने कुछ एक फिल्मों में काम किया। तलत जानी ने इसे डायरेक्ट किया था और फिल्म का संगीत तैयार किया था नरेश शर्मा जी ने। इस गीत में मुझे एक आवाज़ फॉर श्योर लग रही थी मंगल सिंह जी की है, लेकिन क्रेडिट्स में लिखा नहीं है। शबीर कुमार, सुखविंदर सिंह, नीलेश कुमार एंड कोरस, तो एक आवाज़ मेरे ख्याल में मंगल जी की भी थी। अगर मंगल जी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि यस ही वाज इन दिस सॉन्ग और नॉट। और इस प्रोग्राम का सेकंड आवर का पहला गाना जो था वो मैंने फिल्म नरसिम्हा से चुना था, वो भी आज ही के दिन यानी 5th of July को 91 में ही रिलीज़ हुई थी, जिसमें सनी देओल एंड उर्मिला मातोंडकर ने काम किया था। एन चंद्रा ने बनाया था इस फिल्म को और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। क्या आपने ये दोनों फिल्में देखी हुई हैं? अगर देखी थी तो आपको कैसी लगी थी? नरसिम्हा वॉज गुड फिल्म एंड सनी देओल का काम भी बहुत खूबसूरत था। इसमें एक और भी थे एक्टर, नरसिम्हा में और कौन से एक्टर थे, फॉरगेटिंग हिज नेम, वो इतना विवेक मिश्रण, वॉज इट विवेक मिश्रण और अतुल अग्निहोत्री, इन दोनों में से एक थे। एनीवे तो मैंने ये फिल्म देखी हुई है पर याद नहीं आ रहा है। भुलक्कड़ है ना सरिता, हमेशा कहती है सरिता भुलक्कड़ हूँ। तो याद की अगर आपको याद है तो मुझे बताइए आपने ये फिल्म यहाँ लंदन में यूके में देखी थी या कहीं अपने देश में देखी थी। तो दोनों गीत आपकी पसंद पर खरे उतरे होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी, जैसे कि भरत गंगाराम जी ने, जयंत जी ने एंड सुरभि आपने अभी अभी ज्वाइन किया, इरम आपने भी, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत। एंड जहाँ भी हैं आप, जो भी कर रहे हैं, अगर आंखें टिकी हुई हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो देखते रहिए ना, मैं कब मना करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कान इस तरफ होने चाहिए। तो इन कानों में रस घोलती रहेगी सरिता, ऐसी मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ। और मुझे उम्मीद है ये पैरोडी सॉन्ग भी आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। एक और फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, उसका गीत भी मैंने क्यों किया हुआ है, और वो फिल्म है आ पाए बाहर आए, 1971 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म के दो गीतों में से फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको पसंद आएगा ज़्यादा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता ये वाला, या फिर टाइटल ट्रैक आ पाए बाहर आए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं जल्दी से मुझे बता दीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 126 rupees and 75 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: भी आज मैच है ब्राज़ील एंड नॉर्वे के बीच, रात को 9 बजे शुरू होगा एंड टुमारो, वेल टुमारो ही हो जाएगा या आज मिड नाइट कह दे 1 o'clock आप मैच देख पाएंगे मैक्सिको और इंग्लैंड के बीच। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ़ यू मैंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: राइट, जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता फ्रॉम द फिल्म आप आए बाहर आए, और इसी फिल्म का दूसरा गीत है टाइटल ट्रैक आप आए बाहर आए, कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Here at the Money Supermarket Training Academy, we're training our recruits to save people money on their car insurance. But that's not all. Here comes one now. Let's put them to the test. What do we do for our customers on top of saving them money on their car insurance?
5: We give them a £15 reward.
4: And?
5: When they keep on switching with us, they get more and more rewards.
4: Very good. Scarily impressive.
6: Money Supermarket, where better off begins. Download the app today. Rewards include prepaid MasterCard, qualifying purchase with logged in account, 18 plus UK only. See site for T's and C's.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica
7: Gold. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 our line.
8: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit kajalskachor.co.uk.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
12: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
13: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
12: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
13: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
13: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
12: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
13: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
14: લંડન, ગુડ ન્યૂઝ, આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ ટીઆરએસ કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મેં. હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ બેટર prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
16: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a tune, what a tune. बहुत प्यारी धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने और इस गीत को अपनी कलम से लिखा आनंद बख्शी साहब ने. क्या बात है. और इस गीत को पिक्चराइज किस पे किया गया था याद है आपको? फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार, हीरोइन थी साधना और इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था. एंड फिल्म के निर्देशक थे मोहन कुमार. बहुत प्यारी फिल्म थी. अगर आपने नहीं देखी, जब कभी भी मौका मिले तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा. बहुत प्यारा संगीत है इस फिल्म का. एंड गाने जब अच्छे लगते हैं, गाने पॉपुलर हो जाते हैं, तो फिल्म अपने आप ही पॉपुलर बन जाती है, हो जाती है. बहुत से नए नए साथी भी जुड़ रहे हैं. अमिता जी, आपने भी बड़ा प्यारा मैसेज लिखकर भेजा. रानी ऑफ स्लाओ, थैंक यू आपका भी. वजाहत, आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. मिस शेख कहती हैं थैंक यू सो मच, मेरा दिन बना दिया, इतना प्यारा गीत था. तो ऐसे ही गीत जो मेरे दिल को भी भाते हैं वो मैं गीत प्रोग्राम में शामिल करती हूँ. एंड कभी कभी आपकी पसंद को भी मैं ध्यान में रख लेती हूँ और आपकी पसंद के गीत भी प्रोग्राम में पेश करने की कोशिश करती रहती हूँ. बता दूँ कि ये गीत आप तक किसने पहुँचाया.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट, एक बात और कहना चाह रही थी मैं कि जब ये मैं सारा सर्च करती हूँ कि कौन सी फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, तो इट्स नॉट दैट ईजी. जो 80s के बाद की फिल्में हैं उनकी तो डेट मिल जाती है कि रिलीज डेट इज़ दिस, लेकिन जो उससे पहले की फिल्में हैं 60s और 70s की फिल्में हैं उनमें सिर्फ 67 लिखा होता है, 69 लिखा होता है, 60 जो भी जिस साल में रिलीज़ हुई. और

0: ना नहीं किया कि आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे. राइट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कमल जी अवेलेबल हैं या. कमल जी अभी लाइका रेडियो पर, लेट मी जस्ट स्पीक थ्रू कि यस आई थिंक ही इज फिनिश्ड विद द लाइका रेडियो. सो मैं जल्दी से उन्हें फ़ोन करती हूँ और देखें कि वो हमारे लिए अवेलेबल हैं. हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है क्रिकेट के मैदान में. ऑस्ट्रेलिया ने तो बना लिए सारे रन, अब बताते हैं कि इंडिया ने खेलना शुरू किया या नहीं किया है अभी. तो लेट्स सी, कमल जी आते हैं लाइन पर या अभी. यस इट्स रिंगिंग, इट्स रिंगिंग. हेलो कमल जी, गुड आफ्टरनून. यस, क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में? यह ऑस्ट्रेलिया तो खेल चुकी है, इंग्लैंड खेल चुकी है और अभी मैदान में आए हैं ऑस्ट्रेलिया विमेन. सो इंग्लैंड के रन.
1: हाँ जी सरिता जी.
0: हाँ जी, कैसे बताइए क्या हो रहा है?
1: गुड ऑल गुड. आपका फोन आया तो इंग्लैंड का लक हो गया. इंग्लैंड ने विकेट ले ली अभी, फर्स्ट विकेट, और मैच बहुत अच्छा जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ गुड गुड फिनिश एट द मोमेंट. यू नो ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड देन दे इलेक्टेड टू फील्ड पुट इंग्लैंड इन. इंग्लैंड को अंडर प्रेशर डाला तो इंग्लैंड एंडेड अप ऑन 150. And now Australia chasing. They need 151 to win. Lost their first wicket, so they really need to bowl well, field well, if they need to restrict Australia. So Srita ji, everything to play for, full house there. Either
0: I know. Only I'm missing, है ना? Only I'm not there. सभी वहीं पर हैं.
1: You're not there.
0: I'm not there.
1: Nee, but it's quite a good and it's going to be finishing very well, Srita ji. But yeah. What amazing cricket has been played. Lot of skill, lot of high profile, you know. Bahut acha. Aur weather has given us brilliant time, honestly.
0: Yes, yes. So 17 for 1 ho gaye hain Australia ke and they need 134 runs in 109 balls. Am I right?
1: 139, हाँ जी.
0: Yeah.
1: So 139 they need. And Sarita ji, I'm taking this advantage at the moment and taking that to say thank you to all our listeners for listening. Your host and those Kamal Prabhakar for all the updates and reports. And we look forward giving you lots more in the future.
0: Thank you, my dear. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Lovely Sarita. Talking
1: lovely
0: to you. Thank you. और ये थे कमल प्रभाकर जी. And I always forget कि मुझे वो टैग प्ले करना है पहले कमल जी को लेने से पहले. तो जरा वो हो जाए.
2: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Leica Gold. Women's cricket updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
0: चलिए भी कमल जी तो जा चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से स्कोर बता देती हूँ. इंग्लैंड विमेन दे मेड 150 रन्स एंड ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मैदान में है. 1.6 ओवर्स में उन्होंने 21 रन्स बना लिए और एक खिलाड़ी आउट हो चुकी हैं. 130 रन्स दे नीड इन 108 बॉल्स.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: LEICA Gold.
2: Sarita Sabharwal, the biggest classics on LEICA Gold.

0: फिल्म का नाम था छलिया और ये छलिया आई थी 1973 में, जिसे मुकुल दत्त ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में काम किया था नवीन निश्चल ने, साथ में थी नंदा एंड शत्रुघ्न सिन्हा। आर डी बर्मन साहब का था संगीत। उम्मीद करती हूँ मेरा चुना गीत आपने पसंद किया। और जो मेरे साथी अभी अभी आए हैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी। इंतशाब, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली कॉमेंट्स। एंड विनी विनोद वरुण जी, थैंक यू। सभी ये लिख रहे हैं, एस बोगल जी, आपने मुझे पहली दफ़ा शायद मैसेज लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से रितेश आप भी सुनते रहिएगा। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भरत गंगाराम जी अभी अभी आए हैं, थैंक यू। जयंत एंड मीना जी, बहुत लंबी लिस्ट है, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक्स्ट आवर में कुछ अलग से गाने होंगे, यस सुनते रहिए। कुछ ऐसे गीत जो पियानो पर प्ले हुए थे, कौन कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जल्दी बताइए।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
7: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
8: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
7: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
8: Rich, authentic taste every single time.
7: Royal Chai, brewed for business.
8: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
11: Sarita Sabharwal with your weekend classics. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक रही शमशाद बेगम जी. शमशाद बेगम जी का साथ दिया इस गीत में जगजीत कौर जी ने, एंड फिल्म का नाम था हीर राजा, मदन मोहन का था संगीत. और उम्मीद करती हूँ कैफी आजमी साहब का लिखा ये गीत भी आपको पसंद आया. हीर राजा 1970 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म में काम किया था राजकुमार एंड प्रिया राजवंश ने. चेतन आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किशोर कुमार और बहुत सी दूसरी आवाज़ें आपने सुनी। तीन देवियां से चुना था मैंने इस गीत को। देवानंद वॉज प्लेइंग पियानो एंड सिमी ग्रेवाल के लिए ये गीत गा रहे थे। और ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: एक बार फिर से सरिता डिसाइड नहीं कर पा रही है किस गीत को छोड़ दे, कौन सा गीत प्ले करे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर और आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है जल्दी से बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और मीनवाइल आई एम गोइंग टू प्ले यू अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय किशोरदा।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: Here we go. From the film Kati Patan, Rajesh Khanna par play hua tha ye geet.

0: आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो सो मच. इतने प्यार से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और हर गीत के बाद मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है आपकी तरफ से. ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एफर्ट्स, मेरा मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो आपको पसंद आती है. राजीव पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. भारती, अमिता जी, अंजान जी, रानी जी, रोहित डेंगूडरा डेंगूत्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. विमल रायन जी, वत्सला जी, संध्या भापसर, रितेश जी, रानी इंसा, स्लाव, इंतशाब, बहुत लंबी लिस्ट है. दिनेश पोपट जी, थैंक यू ever so much. इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: Right, अभी तक ज़्यादा वोट्स मिले हैं आपके हसीन रुख पे. आज नया नूर है उस गीत को और कुछ एक ने कहा है दिल के झरोखे में. सो कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से बता दें.
2: ये है
3: Laika Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: विजिट TravelHubWorld.com.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर

0: कुछ गाने आपको मजबूर कर देते हैं ना कि साथ साथ गुनगुना, ऐसा ही गीत था ये ब्यूटीफुल गाना जिसे गाया रफ़ी साहब ने एंड ओपी नैयर का था संगीत। फिल्म का नाम था बाहरें फिर भी आएंगी, गुरुदत्त जी ने बनाई थी ये फिल्म और इस फिल्म का संगीत इसमें काम किया था धर्मेंद्र माला सिन्हा एंड तनुजा ने। पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, हो सकता है आपको मालूम हो कि एस टी बर्मन साहब स्टार्टेड आउट एज द कंपोजर ऑफ दिस फिल्म, गाने उन्होंने बनाने थे बट ही सफर्ड अ हार्ट अटैक ड्यू टू विच गुरुदत्त रिप्लेस्ड हिम विद ओपी नैयर। वन ऑफ द सॉन्ग्स विच बर्मन दा रिकॉर्डेड इन मोहम्मद रफीज वॉइस वॉज केप्ट बाय बर्मन, एस टी बर्मन साहब ने रख लिया था आफ्टर हिज रिकवरी एंड इट वॉज नॉट यूज इन दिस फिल्म। सम ईयर्स लेटर बर्मन दा रिकॉर्डेड द सॉन्ग एज ये दिल न होता बेचारा, ज्वेल थीव का गाना जो 1967 में आई थी इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. Like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 127.29, Pakistani rupees 371.38, Sri Lankan rupee 447.53, Bangladeshi taka 164, Afghani is 86.20 and US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate 100 pounds and 61 pence ka 1 gram sona.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo only on Leica Gold.

0: वन ऑफ माई फेवरेट्स टू, और आप भी मुझे लिख रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब पता नहीं कौन आ रहा है आपके दरवाजे पर, देखिए ज़रा नॉक हुई है तो खोल कर देख लें कौन आया है, या फिर दिल के दरवाजे को खोलिए और बताइए मुझे कि कौन है आपके दिल के दरवाजे के बाहर। वैसे स्टूडियो के बाहर खड़े हैं सैंडी शाह, जो कि बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर आएंगे। एक गाना और है जो पियानो पर ही प्ले हुआ था और महेंद्र कपूर साहब ने गाया, वो गीत आज के प्रोग्राम का लास्ट गीत होगा। मुझे इजाज़त देंगे आप और अगले हफ्ते मिलने का वादा, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी के हर पल को जिएं, इंजॉय कीजिएगा। जब तक जान है तब तक इंजॉय कीजिए लाइफ को और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरी दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आ रही हैं मैसा और इधर आ रहे हैं सैंडी शाह, एंड मैनचेस्टर में आप सुन पाएंगे जेजी जे को। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर वीक अहेड, बाय फॉर नाउ।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me.
4: Southall Travel, auto protected.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 9 2 2 3 4 24 hour line.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
8: Latuke halo ne nandala.
7: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
8: Meetha khara, khara.
7: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
9: Thank you. You might be overpaying for card payments. Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo. First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
16: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: गम न कर खुशी का दौर आएगा, तलत महमूद की आवाज़, फिल्म का नाम था शहजादा। फ्यू मैसेजेस, उसके बाद अ सॉन्ग दैट आई लव्ड सिंस आई वाज अ वेरी यंग किड, वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स आई हर्ड, फेल इन लव विद इट। आवाज़ें होंगी शमशाद बेगम, लता मंगेशकर एज द मेन सिंगर्स, और बैकग्राउंड मोहम्मद रफ़ी साहब और बलबीर। फिल्म का नाम था नाता, 1955। तनवीर नकवी ने ये गीत लिखा था। मौसिकार थे एस मोहिंदर एंड इट स्टार्ड मधुबाला, अभी भट्टाचार्य एंड ऑल्सो मधुबाला सिस्टर्स ऑल्सो इन दिस फिल्म। इट वॉज अ म्यूजिकल फिल्म, वाज़न्ट दैट ग्रेट, बट सम ऑफ द सॉन्ग्स इन देयर आर ट्रूली वंडरफुल। दिस इज बाई फार द बेस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स। फिर उसके बाद अ नाइस फिल्म नेम बैंक मैनेजर, 1959, एंड मौसिकार थे मदन मोहन एंड इट स्टार्ड शेखर एंड कामिनी कौशल। आवाज होगी मन्ना डे की।
1: विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह। व्हाट्सएप मैसेज लाइक अ गोल्ड नाउ ऑन 07424 23 23 23। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Visit travelhubworld.com.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get £600 off. Call Sonar Tours on 0208-951-0111.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Vintage Gold on Leica Gold, making summer feel better on the Leica Radio Network.

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: stores for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
2: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10. विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA.
3: सो your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus gamble aware.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं।
1: मनाने वाले मना रहे हैं।
0: वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं।
1: मनाने वाले मना रहे हैं।
0: निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं। निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं।
1: मजे मुहब्बत के आ रहे हैं।
0: वो हमसे चुप हैं, हम

0: होंठों को दोनों हंसी को अपनी छिपा रहे हैं,
1: मजे मोहब्बत के आ रहे हैं।
2: वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: For the last time tonight, the currencies for £1 you're going to get 127.37

0: Laika Gold.
1: Location, location, location.
0: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
0: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना।
1: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Classic Nahumi. Aapke apne Laika Gold par.